स्पेन्सते में बोला हो तंग उन चलेगा मेक्सिको कुलंत्री तंग करे बार वे दिमाग बोलो बोलो बेर ये ने जम कुलम फचाएगी मेक्सिको हाफ तरे स्पेन्स बोलने जैसा बोला हरिकेन अत्लाफ बोले फैन मित्र जिला कुरी मित्र ने दिम का बोले फैन दमासे कुरी बिलियम मेक्सिको कुलंत्री अत्लाफ कुरी दिम बोला अत्लाफ कुरी देवे तुम्हारे कैंसा इतना बोला अत्लाफ मेक्सिको कुलंत्री फाउल कैंसा बोले व्यक्ति तीस अम्मी ने तो फाउल 30 9 minutes me har moti kulai mechuge di hatar met kulai

0: अध्ययन की नव्वे फति हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वस
0: अनेक का ठेस्टु क्या रे भी मता मन्ना हाँ द देर अवे फ़ये
1: आहारे के वार गया कुछ जे आहारे न माला में कुरने
0: हास नू एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती काला हुरी हाँ कंका मंगा लो हो दंगे गे ना
1: स्पेल द टी ये
0: आं मिकाल कंका दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोईतन ए प्रोग्राम उंगे गे ना
2: Spill the tea. हमें कनी दिवे राज्य गाडू.
3: आदित्य दुआ हो गया हवेरो. हाथरगढ़ फनरायगा.
4: Repeat. बुद्ध दुआ हो गया हवेरो. हाथरगढ़ फनरायगा.
3: अधि बुढ़ास्पति दुआ हो गया हवेरो. फहद जहाँडो.
0: एंगा सतरस्ते का 49 kHz medium wave. अधि 89 megahertz FM band. हमें कनी दिवे ही राज्य गाडू. इंतजार कर लवा.
5: Titti titti kutse.
6: Kaam pe shumge kurin kokka bismikia.
7: Kokko men gegea vanne salangoa.
8: Kokko men kiyani bismillahirrahmanirrahim.
9: Gegea vanne ru kiyani assalamu alaikum.
5: Titti titti kutse. अंगार दोगे हावीर फाहिज जहर रिपीट पुरासे दोगे हावीर हाथरुगड़ी फनरेगा अधि आदित दोगे हावीर फाहिज जहर हमें कने दिवि राज्य गाडो
10: मामा हालु कीने
11: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुलु मेंगे हालु कीनेत्ता
10: आरमे मसरंगल मामा कौन कमेटे ती कोल्लनी? गेने मामा आहार में आता।
12: मामा ती हावोर को मुले न कमेने। आहार में ती कं कोल्ला फानो।
11: दरिफुलो में हाँ दरंगडे। ती गुता मामा गातंग्यास। मामा हालु बलाला। मामा के कंतत्ता कोल्ले देती। मामा वारंग उफावे।
13: दुलाहियो दिरियोलो मका दोरहुल वादा दे इम्मे मुजर्रिब तालु नडियकी
14: दुलाहियो सिहत का मगफाही को दे इम्मे कशवरु मस्तरकी डॉक्टरुंगे इरुशाद
15: लेमच्चद्दा इम्मे नकी कोलेस्ट्रोल के सबबुन लेमच्चद्दा मी होनेनु एम लेमच्चद्दा मगफाही कुडवा तफातु कंतत्तावगे
16: मैं हर फीति फाइम वारे बनाने में साल का डिस्किंग इच्छा वारा पोटन ना हर फीति को हो रही जाऊँ मैं
17: हितू
18: के मसला दिमावाने मैं हर एक ही मिहुना दिमावाने एक ही कोई गोता
13: डॉक्टरों के रुषाद आए को दुलाई उदिरियों में बट्टन कुरुमा मगुफाई को देनी
14: कम होकर दो है गेरे नोए जहाँ स्टूडियो इम वागुतो
13: एंगा सतरस्थे का 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
14: दिवे ही राज्य के आडू
19: दूला है

0: palo, ay, sabuna liru, es palo y no, ay, sabi popa, es palo y no, ay, sabi taluga, palo leneto.
1: Nemoni, falo colo gusse que mi nemoni da. Eka mi lemetta, minha. Lemen no ne no mi ke mi lava no. Da. Lava ki sad biya to ge baenge eh mahama. Datta men na varri de hadiya ti genestini. Teng lava ya lema mi gole gota ki kom me lava ekes lemen onna ne. Eka mushala de gotum lema lava ya tafatu aninge. मिन्हा वारा बड़े शुक्रिया आएंगे प्रोग्राम का बार वेल दिने मा उम्मीद करूँ अन हफ्ता इस मिन्हा वाह के दक्काल देवने का मंगे प्रोग्राम निमित्त एंग आड़ो हालंगे ना चे मिन्हा यंग हदिया लिबे तो बालंदे ये वाकी वेल आनो मिन्हा या वाकी वेल आफ अनिका इस म्योती दत्त मेंटीम के फरातों ते कुदेना गेनस्ते वर्री तिहादिया

0: Kokko, then tihenga badu no ve tetu ve bala. Hinga balete kala. Nukevi miha muling hiki tenu.
1: Ale datta, tetu ahi tenu ve. Gahi te vesnu ve. Miha ka anga embuna ahi vesnu ve. Arinden kihneng hadani.
0: Kokko, teka mang halleng hodama.
1: Kihne, kungo taku.
2: Nafsani dula yokam. Me program was debe from nang ehi hote vidarne. Nafsani dula yokam.
3: Komme honhir duhe gere nue jahairu. Repeat homa duhe gere mindam eke jahairu. Adi buddha duhe gere mindam degad tirihun.
4: इंहा सतरस्तेक सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अड्डे नुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड हमें कनी दिवे राज्य गडू
5: मुनिफुई फिलवादी मालूमात के खजाना मुसलिक होते एम में तो बार कुलवे बैवरिया
6: दिवे राज्य के अडू
5: इंहास हतरस्तेक 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
7: मेहर गडिंग हवीर फर्स्ट का डिफेंस अस्ति मिनट में दे राज्य गडो मेहर साहब मे बलालने राज्य के मौसम को लफा कुरागो मेगतो हम मे यद हेंदो दे हे को माद मागे हेंदो दे हे का मौसम कुरे लफा कुरा गोता बे हे गोतो मौसमा बे हे का मेदार ने रु वफवा एमे फहोगे मालूम त कुन दकनी बाय रतका केरी गे सर फोराने कम देंग वज हेनी हुळंगा हुळंग तुरुंग गडे को मेला अशार मेला दिमित के बार मिनुगा कांडतंग आदेग वर का गदवाने कम देंग हम राज्य गे होरिहा सर हद क वेस मे विसार कुराने कम शादी केरी गे असर कुराने कम मौसमा बे हे का मेदार मे मालूम ते बनी mehasabun den mi mirege namad wagutaka balalana mirege maghrib namad wagutwani hagadi 23 minute ka isha namad wagutwani haigadi 40 minute ka den kuria me te ingres pon khabar phalgan me kuria gendani hidayatu ge mag program efo mirege maghrib namad wagutumun maghrib namad wagutuge bangia bangi dua ge nestena maghrib namad wagutwani hagadi 23 minute ka hagadi bagal gun me genestene musaffun filawale me program afahu hati jahar khabar genestene nga de afahu hagadi salis fahe ka yolan taka de no genestene mere ge shana mad wagtwani hagadi salis 10 minute ka ashe jahar duniya ge kale me program genestene me program afahu hagadi baga tiktoks program genestene nga de afahu mere no jahar genestene aha she bunana me program dihe jahar zakai me program genestene me afahu dihe gadi baga finimazan program genestene afahu mere egar jahar studio em bagutun kuria kenda program khiale de bala me program skenestena bar jahar organ me khabar ta genestena ade se far hama mere ke maghrib namaz doktor dhanwadana maghrib namaz doktorani hagadi 23 minute ka
8: engha 4349 kilohertz medium wave 89 megahertz fm band
5: divehrajche ke adu

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदा दु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबे वायर बिल नो देखी गेंग लारी वीनुए नेंगी गेंग उले कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे माफ़ाही।
3: टेक के दुनियां अलगन में खोग्गे मिलने किताब बने दतरुकं हंदां हुरी किताब पेफुलन तो मिस सवाल के जवाब दतरु निमुंगे कुरिं अलगन त्याय हुं तेरी ना हिस्सा कुराना टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफनी तक उनके नमंदा बदल तक बालानु लादू कोल्लम की कुरम वाने वारु के कमेनु मैं हफ्ते खास टेक के एम फाहु के खबर तंग डुआ हाला त्याय फुलन तैयार तो एम वे खबर फरबदे या बदल तक आ को फरबदे गिनस्ते टेक के खबर तंग अडुआ हालमा
4: खबर